0: घर में कोई नहीं मान रहा है, तुम मान जाओ, भूल जाओ मुझे।
1: याद करोगी मुझे?
0: जब जब बारिश होगी तब।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
2: DS साइंस एकेडमी वेयर योर ड्रीम्स टर्न इनटू रियलिटी। 12th बोर्ड साइंस 2026 शानदार नतीजे। टॉपर मानस शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, DS के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27 क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम। DS साइंस एकेडमी FCI गोडाउन रोड गंगापुर सिटी नियर सैनिक नगर एंड नसिया कॉलोनी। संपर्क करें 8005598377। इसके अलावा 9983413111।
3: DS साइंस एकेडमी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान कक्षा 10th परीक्षा परिणाम 2026। हमारे स्टार परफॉर्मर्स 99% से अधिक 1 विद्यार्थी, 98% से अधिक 7 विद्यार्थी, 97% से अधिक 28 विद्यार्थी, 96% से अधिक 53 विद्यार्थी, 95% से अधिक 76 विद्यार्थी, 90% से अधिक 252 विद्यार्थी। अब आपकी बारी है 10th बोर्ड 2027 में 95% प्लस स्कोर का सपना अब हकीकत बनेगा। DS साइंस एकेडमी में दाखिला लें और बने टॉपर बैच 2027 का हिस्सा। हम क्या देते हैं? AIIT JEE 6 से 12 तक फाउंडेशन एंड बोर्ड, RBSE एंड CBSE, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम्स एंड लेटेस्ट स्टडी मटेरियल, सिनोनिम ऑफ सक्सेस। एडमिशन ओपन फॉर सेशन 2026-27।
4: गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभातम, सत श्री अकाल दोस्तों। वक्त हो चुका है 10 बज चुके। इस वक्त आप मेरे साथ टोन करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस और दोस्तों वक्त हो चुका है आपके मनपसंद कार्यक्रम हेलो फरमाइश। दोस्तों कार्यक्रम की पहली फरमाइश हमारे पास आई है आसाराम जागा जी की। आसाराम जागा जी ने हमें कॉल किया है अंबेडकर धर्मशाला गंगापुर सिटी से। सुनते इनकी फरमाइश पर ये गाना 89.6 रेडियो DS पर।

0: 96 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडिंग इन 9th क्लास। बिफोर कमिंग इन डीएस आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन। नाउ आई नो दैट व्हाट इज रियल फाउंडेशन। The faculty of DS is very experienced and supportive, and study material is designed straight to the point in quality. Regular doubt classes enhances our concept building for better future and selection in higher exams like JEE and NEET. Let's study with us for better career building.

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का में आपका।

0: गुड मॉर्निंग मैडम।
1: गुड मॉर्निंग सर, नाम क्या है आपका?
0: मेरा नाम सोहन सेठी है।
1: कहाँ से बात कर रहे
0: हैं? राजपुर सेठी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
0: दुनिया हसीनों का मेला।
1: ऊपर सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करिएगा।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: डीएस साइंस एकेडमी वेयर योर ड्रीम्स टर्न इनटू रियलिटी। 12th बोर्ड साइंस 2026 शानदार नतीजे। टॉपर मानस शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, डीएस के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27 क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम। डीएस साइंस एकेडमी, एफसीआई गोडाउन रोड, गंगापुर सिटी, नियर सैनिक नगर एंड नसिया कॉलोनी। संपर्क करें 8005598377। इसके अलावा 9983413111।
3: डीएस साइंस एकेडमी माध्यमिक

0: हेलो।
1: हाँ जी सर, नमस्ते।
0: नमस्कार दीदी, राजू लवानिया बोल रहा हूँ दीदी, आगरा उत्तर प्रदेश से।
1: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: गाना एक नई वाली अनिल कपूर वाली हीर रांझा फिल्म थी
1: जी सर।
0: मैं एक गीत था अखियों ने अखियों से मिलके, रेशमा जी की आवाज में।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू दीदी, नमस्कार।
1: वेलकम सर।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: आशीष मीना।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: करौली।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: इसमें बावली बावली करती।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वर 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: डीएस साइंस एकेडमी वेयर योर ड्रीम्स टर्न इनटू रियलिटी। 12th बोर्ड साइंस 2026 शानदार नतीजे। टॉपर मानस शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, डीएस के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27 क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम। डीएस साइंस एकेडमी FCI गोडाउन रोड गंगापुर सिटी नियर सैनिक नगर एंड नसिया कॉलोनी। संपर्क करें 8005598377। इसके अलावा 9983413111।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: आरवी गुजर बोल रहे गंगापुर से, और खाना है मखना भी।
1: थोड़ा अच्छी तरह बोले, आवाज समझ में नहीं आ रही।
0: हम आरवी गुजर गंगापुर से बोल रहे हैं।
1: गाने
0: मखना बे मखना,
1: मखना बे मखना,
0: हम मखना खाने मतलब।
1: ओके मैम, सुनाओ।

0: हाँ जी, नाम क्या है आपका? कहाँ से बात कर
1: रहे हो? सिटी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: दिल परदेसी होगा।
0: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। करिए गाना।

0: तेरे पे जिंदगी कुर्बान।
1: दोस्तों हमारी स्टूडियो कॉलिंग लाइन चालू है, आप कॉल कर अपनी फरमाइशों को दर्ज कराए, हम आपकी फरमाइशों को जल्दी ही पूरा करेंगे। 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: कहाँ से बात कर रहे हो अरब जी?
1: मैं गंगापुर सिटी से बात कर रहा हूँ।
0: कौन सा खाना सुनना चाहोगी?
1: पल पल
0: ओके सर, तैयार है आपकी फरमाइश।

0: पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: हेलो,
3: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
2: जी मैम, मेरा नाम बंटी विजय।
3: कहाँ से बात कर रहे?
2: जी मैडम, मैं कोटा मोड़ खड़ी गंगापुर सिटी।
3: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
2: मैडम जी वो कपूर गोरम संसार सारा मुझे नहीं आगा यार, वो ऐसा गाना है ना, वो आरती है ना।
3: आरती तो सर भजन है।
2: हाँ आरती है ना मैडम, वो संसार सारम भुजबिंद नहीं आरम।
3: हाँ हाँ हाँ
2: वो वाली।
3: ओके सर।

0: गुड मॉर्निंग मैम।
1: गुड मॉर्निंग, नाम क्या है आपका?
0: निशा शर्मा, गंगापुर से पेश है।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: लगता है देव तेरी शाम आई है सॉन्ग।
1: ओके, नाम सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।

0: जब जब बारिश होगी तब।
1: हेलो,
2: हाँ जी एफएम से।
1: हाँ जी, नाम क्या आज है?
2: सौरदेव।
1: कहाँ से बात कर रही
2: हूँ? गंगापुर सिटी से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहिए?
2: तेरे लिए।
1: देखो मैं सुना।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: विद्या बैरवा।
1: कहाँ से बात कर रहे हो विद्या जी?
0: गंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: चांदनी रात में गोली चला गया।
1: ओके मैम, सुना रहे हैं, आपकी फरमाइश करिए गाना।

0: जी नाम क्या है आपका?
1: न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क से जान रहे।
0: कहाँ से बात कर रहे?
1: मैंने बात करते हुए
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
1: मधुओं पर मैं निकला न करो रोज की रानी संवाद है।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। परिवार

0: क्या है आपका?
1: एक गाँव चलवाना है।
0: नाम क्या है आपका?
1: नंदिनी गांगेड़ी।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं गांधी जी?
1: दूध की डेयरी से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: काम चांद।

0: हेलो
1: हेलो गुड मॉर्निंग मैम।
0: गुड मॉर्निंग सर, नाम क्या है आपका?
1: मैम मेरा नाम है सलमानी।
0: कहाँ से बात कर रहे
1: हो? जूलियर गंगापुर के किचन मैम।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
1: आज गाना सुनना चाहते हैं सारा सारा दिन कोई काम करोगे प्यार कब करोगे।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश, करिए गाना।

0: आपका?
1: हेलो,
0: नाम क्या है आपका?
1: मेरा नाम उमेश जांगे।
0: कहाँ से बात कर रहे हो उमेश जी?
1: झूठ की देवी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: किताब सॉन्ग।

89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला

0: हेलो
1: पलक बेटा, सत श्री अकाल भाई।
0: सत श्री अकाल सर, नाम क्या है आपका?
1: ना भाई, मैं पिंड मौड़ खुर्द जिला बठिंडा जगजीत मट्टू बोलना भाई।
0: जी सर, कैसे हो?
1: ठीक है भाई, तुसी दसो भाई, अपने मीना साहब नु भी सत श्री अकाल बुला दो भाई, मेरी वड्डे साहब नु जी।
0: ओके सर, मैं बोल दूंगी, अभी बाहर रहे हूं।
1: ठीक है भाई, गर्मी बहुत ज्यादा भाई, सेहत का ख्याल रखियो भाई, पानी तानी पी लिया करो।
0: हाँ सर, गर्मी तेज पड़ रही है। उधर कैसा है मौसम पंजाब
1: में? साडे भी भाई बहुत, पंजाब दे विच भाई गर्मी ज्यादा है भाई।
0: हाँ सर, अब बहुत थोड़ी ज्यादा ही हो रही है गर्मी।
1: हाँ भाई, तुसी तो कहने हो भाई, पौना कदों आउणगे? तुहानू तां पता हुंदा भाई, रेडियो वाले वीरा भैणां नू तां पता हुंदा कदों आउणगे भाई, ओ कदों आउणगे पौना भाई, ओ की कहंदे
0: हुंदे। कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: गीत भाई फिल्म है अखियों के झरोखे में, वो गीत टाइटल सुना दो भाई।
0: अखियों के झरोखे के टाइटल सॉन्ग?
1: हाँ बेटा, हाँ जी हाँ जी।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना रेडियो।

0: हेलो
1: नमस्ते।
0: हाँ राधे राधे।
1: राधे राधे जी सर, नाम क्या है आपका?
0: नाम है धीरूभाई ठाकुर, मऊकला।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
0: वो है दे दे प्यार दे।
1: इसीलिए सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करिएगा।

0: हेलो जी, नाम क्या है आपका?
1: मेरा नाम है पलक।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: आरो सॉन्ग।
0: कौन सा?

0: नाम क्या है?
1: अंकित मीना।
0: कहाँ से बात कर रहे
1: हैं? इंदौर से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
1: झोल।
0: झोल?

0: प्रदीप, हम एक नहीं हो सकते।
1: क्यों?
0: क्योंकि घर वालों ने मेरा रिश्ता दूसरी जगह तय कर दिया है। तुम मेरे घर वालों को पसंद नहीं हो।

0: फिर कौन सा गाना सुनना चाहूँगी?
1: तुम्हारा बुद्धि का मर्दे छोरे छोरे।
0: कौन सा सर?
1: मर्दे छोरे छोरे बुद्धि
0: डिब्बी का।

0: 89.6 DSFM पे।
1: चुका है 11:55 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश 89.6 रेडियो डीएस।

0: गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करके लोगों को लुभाते हैं। कई बार वे मशहूर हस्तियों या सरकारी नेताओं के डीप फेक वीडियो बनाकर दिखाते हैं ताकि आपको भरोसा हो जाए। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति आपको निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाएं। निवेश चाहे शेयर बाजार, क्रिप्टो करेंसी, सोना या कोई भी हो, गारंटीड रिटर्न का दावा हमेशा धोखा होता है। ठग आपको फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट पर पैसा डालने के लिए कहते हैं। वहां आपको दिखाया जाता है कि आपका पैसा बढ़ रहा है, लेकिन असल में सारा पैसा धोखेबाजों के खाते में चला जाता है। याद रखें, न कोई सेलिब्रिटी और न ही सरकार कभी भी किसी निवेश पर गारंटीड रिटर्न की गारंटी देती है। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो चुके हैं तो तुरंत 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। संक्षिप्त और प्रभावी रूप में इस्तेमाल करना चाहें तो बताएं, मैं और छोटा स्लैश और भी आकर्षक संस्करण भी बना सकता हूं।
1: रेडियो DS, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DS FM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।
3: दोस्तों, वक्त हो चुका है 4 बज चुके। इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 89.6 रेडियो DS गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपके रेडियो दोस्त अर्जे पलक। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 45 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों, अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम बैक टू बैक गाने का। थोड़ी देर में आप सुनोगे आपका मनपसंद कार्यक्रम राजस्थानी 89।

0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
2: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6।

0: Sarigama Karma, the perfect gift for you.
1: रेडियो डीएस
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़े धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करके लोगों को लुभाते हैं। कई बार वे मशहूर हस्तियों या सरकारी नेताओं के डीप फेक वीडियो बनाकर दिखाते हैं ताकि आपको भरोसा हो जाए। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति आपको निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाएं। निवेश चाहे शेयर बाजार, क्रिप्टो करेंसी, सोना या कोई भी हो, गारंटीड रिटर्न का दावा हमेशा धोखा होता है। ठग आपको फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट पर पैसा डालने के लिए कहते हैं। वहां आपको दिखाया जाता है कि आपका पैसा बढ़ रहा है, लेकिन असल में सारा पैसा धोखेबाजों के खाते में चला जाता है। याद रखें, न कोई सेलिब्रिटी और न ही सरकार कभी भी किसी निवेश पर गारंटीड रिटर्न की गारंटी देती है। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो चुके हैं तो तुरंत 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। संक्षिप्त और प्रभावी रूप में इस्तेमाल करना चाहें तो बताएं। मैं और छोटा स्लैश और भी आकर्षक संस्करण भी बना सकता हूं।
3: Good news for Dear Science Academy and Gangapur Delhi and all over India. According to NTA also.

0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है। गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: डीएस साइंस एकेडमी, वेयर योर ड्रीम्स टर्न इनटू रियलिटी। 12th बोर्ड साइंस 2026 शानदार नतीजे। टॉपर मानस शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, डीएस के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27 क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम। डीएस साइंस एकेडमी, FCI गोडाउन रोड, गंगापुर सिटी, नियर सैनिक नगर एंड नसिया कॉलोनी। संपर्क करें 8005598377। इसके अलावा 9983413111।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
3: डीएस साइंस एकेडमी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, कक्षा 10th परीक्षा परिणाम 2026। हमारे स्टार परफॉर्मर्स 99% से अधिक 1 विद्यार्थी, 98% से अधिक 7 विद्यार्थी, 97% से अधिक 28 विद्यार्थी, 96% से अधिक 53 विद्यार्थी, 95% से अधिक 76 विद्यार्थी, 90% से अधिक 252 विद्यार्थी। अब आपकी बारी है 10th बोर्ड 2027 में 95% प्लस स्कोर का सपना अब हकीकत बनेगा। डीएस साइंस एकेडमी में दाखिला ले और बने टॉपर बैच 2027 का हिस्सा। हम क्या देते हैं? AIIT JEE 6 से 12 तक फाउंडेशन एंड बोर्ड, RBSE एंड CBSE, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम्स एंड लेटेस्ट स्टडी मटेरियल, सिनोनिम ऑफ सक्सेस। एडमिशन ओपन फॉर सेशन 2026-27, लिमिटेड सीट।
4: दोस्तों वक्त हो चुका है 4:30 का। इस वक्त आप मेरे साथ टून कर रहे थे 9.6 रेडियो गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपके रेडियो दोस्त आरजी पलन। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 43 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों वक्त हो चुका है आपके मनपसंद कार्यक्रम हेलो फरमाई। दोस्तों कार्यक्रम की पहली फरमाइश हमारे पास आई है सवाई माधेपुर से। सवाई माधेपुर से हमें कॉल किया है मोनिका मीणा जी ने। सुनते इनकी फरमाइश पर ये गाना 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: नमस्ते जी।
1: सर नमस्ते, सर नाम क्या है आपका?
0: महावीर जी से चौधरी निवेदन कर रहा हूँ।
1: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: गाना बढ़िया लाए हैं आपके चैनल के लिए।
1: हाँ सर बताइए।
0: कोठरी ऊपर कोठरी।
1: ओके सर, तुम्हारे यहाँ की फरमाइश कर रहे हैं। वेलकम। हेलो
2: कोठे ऊपर कोठरी, ऊपर से उतरी छोकरी, यारो ये तूफान मेल है या आफत की टोकरी।

0: जी नमस्ते मैडम।
1: एक नाम क्या है आपका?
0: हल्दीराम गुजर बोल रहा हूँ।
1: कहाँ से बात करें सर?
0: नाम गुजर क्या?
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: गाना ये है पानी रे पानी।
1: पानी रे पानी
0: जी।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपको। फरमाइश
0: होगा।

0: गुड इवनिंग मैम।
1: गुड इवनिंग सर, नाम क्या है आपका?
0: मथुरा से शारदा प्रसाद प्रजापति।
1: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: फिल्म का नाम सिर्फ तुम, साधु ने गीत गाया है, जिंदा रहने के लिए एक मुलाकात जरूरी है सनम, जरूरी है सनम।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।
0: ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।

0: हेलो
1: दीदी, राधे राधे।
0: जी राधे राधे, नाम क्या है आपका?
1: मेरा नाम समता जाधव।
0: जी कहाँ से बात कर रहे हो दीदी?
1: बाड़कला से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे आज?
1: गाना है जिंदगी इम्तिहान लेती है।
0: ओके दीदी, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करिए।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: नाम आसाराम जाड़ा। मैं
1: कहाँ से बात कर रही?
0: गंगापुर सिटी मिर्जापुर से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: श्याम है धुआं धुआं।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करिए।
0: थैंक यू
1: जी। वेलकम।

आरजू झूठ है, कहानी है, आरजू का फरेब खाना नहीं। खुश जो रहना हो जिंदगी में तुम्हें, दिल किसी से कभी लगाना नहीं।

क्यों बनाती हो तुम रेत के ये महल जिनको एक रोज खुद ही मिटाओगी तुम। आज कहती हो इस दिल जले से प्यार है तुम्हें, कल मेरा नाम तक भूल जाओगी तुम।

0: हाँ जी, नाम क्या है आपका? गुड आफ्टरनून, नाम क्या है आपका? कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: मेरे महबूब
0: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करें।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़े धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करके लोगों को लुभाते हैं। कई बार वे मशहूर हस्तियों या सरकारी नेताओं के डीप फेक वीडियो बनाकर दिखाते हैं ताकि आपको भरोसा हो जाए। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति आपको निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाएं। निवेश चाहे शेयर बाजार, क्रिप्टो करेंसी, सोना या कोई भी हो, गारंटीड रिटर्न का दावा हमेशा धोखा होता है। ठग आपको फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट पर पैसा डालने के लिए कहते हैं। वहां आपको दिखाया जाता है कि आपका पैसा बढ़ रहा है, लेकिन असल में सारा पैसा धोखेबाजों के खाते में चला जाता है। याद रखें, न कोई सेलिब्रिटी और न ही सरकार कभी भी किसी निवेश पर गारंटीड रिटर्न की गारंटी देती है। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो चुके हैं तो तुरंत 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। संक्षिप्त और प्रभावी रूप में इस्तेमाल करना चाहें तो बताएं। मैं और छोटा स्लैश और भी आकर्षक संस्करण भी बना सकता हूँ।

0: सर नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
1: नाम तुलसीराम मीना, ग्राम तिलु खिड़ाजे।
0: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: मेरे गोरे गालों का रेशमी बालों का।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश का गाना रेडियो में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद मेरे भाई।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका? कहाँ से बात कर रहे हो?
0: सुनवापुर सिटी से बात कर रहा हूँ।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: हाँ,
1: ओके का सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: हेलो
1: हेलो।
0: सर नमस्ते। सर
1: नमस्ते।
0: नाम क्या है आपका?
1: मेरा नाम मोहम्मद हारून है, ग्राम अकबरपुर, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश, एमपी से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: फिल्म का नाम है आशिकी।
0: गाने के बोल?
1: गाने के बोल हैं दिल का आलम।
0: ओके सर, सुना रहे हैं, आपकी फरमाइश करिए गाना।

दोस्तों वक्त हो चुका है 5:15 का। इस दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 43 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़े धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करके लोगों को लुभाते हैं। कई बार वे मशहूर हस्तियों या सरकारी नेताओं के डीप फेक वीडियो बनाकर दिखाते हैं ताकि आपको भरोसा हो जाए। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति आपको निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाएं। निवेश चाहे शेयर बाजार, क्रिप्टो करेंसी, सोना या कोई भी हो, गारंटीड रिटर्न का दावा हमेशा धोखा होता है। ठग आपको फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट पर पैसा डालने के लिए कहते हैं। वहां आपको दिखाया जाता है कि आपका पैसा बढ़ रहा है, लेकिन असल में सारा पैसा धोखेबाजों के खाते में चला जाता है। याद रखें, न कोई सेलिब्रिटी और न ही सरकार कभी भी किसी निवेश पर गारंटीड रिटर्न की गारंटी देती है। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो चुके हैं तो तुरंत 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। संक्षिप्त और प्रभावी रूप में इस्तेमाल करना चाहें तो बताएं, मैं और छोटा स्लैश और भी आकर्षक संस्करण भी बना सकता हूं। सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है। गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है। गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।

0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस
1: म्यूजिक बोहिमिया
2: चैबिंग बॉय।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: नया दिन बहुत बहुत मुबारक हो। मैं हूँ आरजी खुशी। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि हर सुबह मैं कहती हूँ कि अपने जीवन में अगर थोड़ा सा बदलाव अगर हम हर सुबह लेकर आए तो पूरा दिन कितना बेहतर जा सकता है, पूरा हफ्ता, पूरा महीना, पूरा साल। और आज भी मैं एक ऑब्जर्वेशन से आपसे बात करने वाली हूँ। भगवत गीता में हम देखते हैं कि श्री कृष्ण तब बोलना शुरू करते हैं जब अर्जुन उनसे एडवाइस मांगते हैं। यानी कि पहले जब अर्जुन इतने परेशान होते हैं तो श्री कृष्ण अपनी तरफ से बोलना शुरू नहीं करते। अगर हम सोचिए अपनी लाइफ में ये अप्लाई कर दें तो हमारी लाइफ कितनी ज्यादा आसान हो जाएगी, है ना? सोच कर देखिए। लौट कर आती हूँ थोड़ी देर में। मैं हूँ आरजे खुशी। 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: देखो वैसे तो सर्दियों में ना किसी का एक्सरसाइज करने का मन करता नहीं है, लेकिन अगर सर्दियों में आपने एक प्राणायाम कर लिया ना तो आपकी हेल्थ बिल्कुल ठीक रहेगी। मैं हूँ आरजे खुशी और आपकी हेल्थ को बेहतर बनाने का एक आसान तरीका आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। जिन लोगों को सर्दियों में बहुत ज्यादा ठंड लगती है, जिनके पैर के नीचे के जो तलवे हैं वो एकदम ठंडे हो जाते हैं, और जिनको साइनस रहता है या नाक बंद हो जाती है, कफ बहुत ज्यादा रहता है, उन्हें सर्दियों में एक प्राणायाम करना चाहिए जिसका नाम है सूर्य भेदी। इसमें क्या होता है कि आपको अपनी बाई नाक को बंद करना है और दाई नाक से सांस लेनी है, बाई से छोड़नी है, बस आपको इतना ही करना है। है ना आसान? लेकिन आपको बताइए इतनी इफेक्टिव होती है, आपकी पूरी बॉडी को गर्म कर देती है, और अगर डायबिटीज ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है ना उसको भी ठीक कर देती है। अपना कर देखें और डिफरेंस खुद फील करें। आती हूँ थोड़ी देर में, मैं हूँ आरजे खुशी।
1: गंगापुर सिटी की धरती पर रेडियो।

कभी कभी ना सुबह की शुरुआत होती ही बड़ी चिड़चिड़ वाली है, लेकिन अगर हमने अपनी प्रतिक्रिया उसके प्रति बदल दी ना तो सब कुछ बदल जाएगा। मैं हूँ आरजे खुशी। सोच कर देखिए कि अगर आप किसी चीज पे अपनी प्रतिक्रिया ही ना दें तो वो आपको इतना परेशान कर ही नहीं सकती। और सुबह को बेहतर बनाना है तो सुबह की चिकचिक जो होती है ना उससे थोड़ा सा बचने की कोशिश कीजिए। और अगर घर का हर सदस्य इस चिकचिक से बचने की कोशिश करे और अपनी शांति बनाए रखने की कोशिश करे तो पूरा घर एकदम आराम से शांति से हैप्पीली रह पाएगा, है कि नहीं? तो हम कोशिश कर सकते हैं कि जब भी हमें गुस्सा आए या जब भी हमें चिड़चिड़ होने की कोशिश करे, स्पेशली एकदम सुबह सुबह, तो हम कोशिश करें कि वहां हम अपनी कोई प्रतिक्रिया ना दें। और आप देखेंगे कि वो बात एकदम छूमंतर हो जाएगी, मतलब कि उस बात का कोई असर आप पर पड़ेगा ही नहीं। अब मुलाकात होगी कल। अभी के लिए यहाँ से निकलती हूँ, मैं हूँ आरजे खुशी। 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है। गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6
1: डीएसएफएम पे मैं तनीषा आपके साथ सफरनामे में आपका स्वागत है। दुनिया में कई फनकार पैदा हुए और गुजर गए, लेकिन कुछ फनकार ऐसे भी हैं जो अपने काम से अमर हो गए और उन्होंने वो मुकाम हासिल किया जिसे बरसों बाद भी भूल पाना सभी के लिए नामुमकिन है। कुछ ऐसे ही थे रिदम किंग और ताल के बादशाह कहे जाने वाले ओपी नैयर साहब। नैयर साहब ने न जाने कितने गानों में अपने संगीत का जादू बिखेरा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो फिल्मी दुनिया में संगीतकार बनने नहीं बल्कि हीरो बनने आए थे, लेकिन उनको रिजेक्शन मिलने लगा। रिजेक्शन के साथ उनको सलाह मिली कि कुछ और करो। कुछ और के नाम पर एक संगीती था जो वो थोड़ा बहुत जानते थे, तो हारमोनियम से दोस्ती बढ़ाते हुए उन्होंने संगीत का जादू चलाना शुरू किया। गुरुदत्त की फिल्मों के बाद तो उन्होंने कभी आर कभी पार, येलो मैं हारी पिया और बाबूजी धीरे चलना गीतों से धूम मचाई। ओपी नैयर का नाम फिल्म जगत में चल पड़ा। 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनीषा आपके साथ।

गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है। गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस
1: 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनीषा आपके साथ। ओपी नैयर को संगीत की दुनिया का बादशाह कहा जाए तो कोई हर्ज नहीं होगा। उनके संगीत और ताल ने बॉलीवुड की फिल्मों में ऐसी छाप छोड़ी है कि संगीत प्रेमी आज भी उनके मुरीद हैं। वो अपने जमाने के सबसे महंगे संगीतकार थे। वहीं स्वर्ण कोकिला दिवंगत लता मंगेशकर के स्वरों का जादू भी हर तरफ बिखरा हुआ था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि संगीत का अपार ज्ञान रखने वाले दो महान गायकों के सुरताल कभी एक नहीं हुए। बड़े से बड़े संगीतकार लता मंगेशकर के साथ काम करने के लिए बरसों इंतजार करते थे, लेकिन ओपी नैयर ने कसम खा ली थी कि वो लता के साथ कभी गाना नहीं गाएंगे, ना ही उनसे कभी अपना गाना गाने के लिए कहेंगे। लेकिन ऐसा क्या हुआ था ओपी नैयर और लता मंगेशकर के बीच, ये आपको बताऊंगी, लेकिन एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद। 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनीषा आपके साथ।

0: तेरे समझ में ना आए, बहुत शुक्रिया।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो DS, एक

तो पैर दे के गए, उठ गए मोहब्बत पर दे ये मर्दे भी कर दे के आसिक जमाने तो डर दे। आँखियाँ में नमी है, एक तेरी कमी है, सोचा नहीं था मैं लड़ दे।

हेलो दोस्तों, आपने ट्यून किया 89.6 रेडियो टीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेड दोस्त आकाश, और आज हम करने जा रहे हैं बात गर्मियों में खान पान के बारे में। गर्मियों में हमें हल्का और पौष्टिक खाना खाना चाहिए। ज़्यादा तेल और मसाले वाला खाना हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। इस मौसम में हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी वाले फल जैसे तरबूज और खीरा खाना चाहिए। दही और छाछ शरीर को ठंडक देते हैं और पेट को स्वस्थ भी रखते हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा बाहर की जंक फूड से बचना चाहिए और घर का जितना हो सके ताज़ा खाना ही खाना चाहिए। सही खान पान अपना कर हम गर्मियों में खुद को स्वस्थ और एनर्जेटिक रख सकते हैं। और चलिए अब सुनते हैं एक और सॉन्ग, उसके बाद मिलते हैं।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6।

हेलो दोस्तों, आपने ट्यून 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का में आपका रेडियो दोस्त आकाश। और अब करते हैं एक नए अंदाज में और एक नई ऊर्जा के साथ बात। क्या आपने कभी सोचा है अगर पेड़ नहीं होंगे तो क्या होगा? न हवा मिलेगी, न छाया मिलेगी और गर्मी में तो हम सब फ्राई हो जाएंगे। तो दोस्तों, पेड़ हमारे असली सुपर हीरो हैं। ये बिना किसी केप के हमें ऑक्सीजन देते हैं, मतलब फ्री में जिंदगी बांटते हैं। सुबह उठो तो पेड़ ताजी हवा देते हैं, दोपहर में धूप से बचाते हैं और शाम को मन को सुकून देते हैं।

लेकिन अगर हमने पेड़ काटते रहे तो सोचो ना बारिश होगी ना ठंडी हवा, बस गर्मी ही गर्मी। तो दोस्तों अब टाइम आ गया है एक्शन का, हर इंसान बोले एक पेड़ और एक जिंदगी। और अब सुनते हैं बैक टू बैक कुछ सॉन्ग और मिलते हैं एक नई वजह के साथ और एक नए अंदाज में।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डी।

0: Oi, lover. आज कुछ सुनाए गाने?
1: तो कहा ही नहीं।
0: अच्छा, जी मैं कहा फिर सुनाएगा?

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन रेडियो
2: डीएस
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धरती पर रेडियो डीएस
2: पसंद मचना चाहिए
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धरतर रेडियो डीएस
2: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे।

0: मैजिक रेडियो DS 89.6
1: गंगापुर सिटी के घर पर रेडियो DS
2: पसंद रांची है गाना,
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धरतर रेडियो
2: डीएस
3: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे।

0: मैजिक रेडियो DS 89.6 गंगापुर सिटी की धड़कन
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।

0: कुछ नहीं चलेगा।
1: अरे अरे लेकिन लेकिन मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, क्या क्या करती हो? अच्छा अच्छा सुनो, एक बार एक बार लेकिन एक बार

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन रेडियो डीएस
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे

0: मैजिक रेडियो DS 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन रेडियो DS
2: बस मजा चाहिए गाना
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन रेडियो डीएस
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6

0: मैजिक रेडियो डी एस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धरतर रेडियो डी एस
2: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डी एस।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धरतर रेडियो
2: डीएस
3: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धरतर रेडियो
2: डीएस
3: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।